उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदाम करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
3: This is
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: This is FM 101.
5: Talk about music. Talk about music. Talk about 101, the station with richer sound. Tune in to the 101.
6: Treat the heat with a better beat. FM 101. We play your choices. Get the real stuff. Get the pure stuff. 101 FM.
7: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
3: This is FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खवातीन हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

रातों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर दिफा ने जम्मू कश्मीर तनाज़े के बारे में भारतीय वजीर दिफा के हालिया गैर जिम्मेदाराना बयान को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। उनसाज असम्बली के इंतखाबात के लिए मीरपुर डिवीजन में पोलिंग जारी है। वजीर आला सिंध ने सूबे से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया है। तरोबा में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे रोज़ पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स का खेल 199 रन 3 खिलाड़ी आउट से आज फिर शुरू करेगा।

बात हम कर रहे हैं, मगर ये बहुत जरूरी है कि देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के हवाले से ये मामला टेकअप किया जाए। आईटीएनई की चेयरपर्सन नहीं आ रही है इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छी खातून है, उन्होंने पहले भी आईटीएनई के हवाले से जो है वो काफ़ी एक्सपर्टीज है, मेरिट के ऊपर वो टॉप के ऊपर आई थी और वो भी इंशाल्लाह ताला उसका अप्रूवल हो गया, नोटिफिकेशन आजकल में जारी हो जाएगा तो वो आप खुद देख लेंगे। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स हमारी कुछ पेंडिंग थी वो भी कंप्लीट कर ली गई हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि अगर तमाम तर बॉडीज, नेशनल प्रेस क्लब भी अपना किरदार अदा करें, पीएफयूजे जितने हैं सारे अपना किरदार अदा करें, उसके अलावा सीपीएनई अपना किरदार अदा करे अगर कर सकता है, अमेंड अपना किरदार अदा करे अगर कर सकता है, तमाम तर बॉडीज बैठ के अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के हवाले से कोई ना कोई पॉलिसी ले आए फिर उस पर अमल दरामद कराना हमारी जिम्मेदारी है। मगर इसके लिए एक जॉइंट एक्शन कमेटी जिसे कहते हैं पहले भी बनी थी, अगर आप लोग उस पर कोई थोड़ी वर्किंग करके मुझे बता सकें। देखिए मैं आया हूँ, मैं अपने घर आया हूँ और मैं एक फैमिली की तरह आपसे बात करूँ, ये सियासी तकरीर नहीं है। मैं जो मुश्किलात है उसका अदराक भी है और जो पॉलिसी के मामलात है मैं खुल के आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा और कुछ बेहतर तजावीज आपकी तरफ से आएंगी तो हम इसका हल निकाल सकेंगे। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इस पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के हवाले से कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह लेटर दिया शाम को घर भेज दिया। इस पे अगर आप सारी बॉडीज बैठ जाएं और कोई लाहे अमल इख्तियार कर लें तो हम इस पे आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए कई हल निकल सकते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कोई ऐसा रिपोर्टर है, कोई ऐसा न्यूज़कास्टर है, कोई ऐसा एंकर है जो डिजिटल के जरिए भी, जो आपने बताया मोनेटाइजेशन के जरिए उनको कोई इनकम आ रही है, तो क्या चैनल उससे मुस्तफीद नहीं हो सकता? क्या जो बंदा एक चैनल के अंदर एग्जिस्ट करता है, देखिए चैनल का बड़ा शेल्टर होता है, मीडिया हाउस का बड़ा शेल्टर होता है, अगर कोई मोनेटाइजेशन का मॉडल अपना लिया जाए जॉइंटली कि जी मैं चले, मैं चैनल मुझे पे करा तो मैं चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और ये ऑलरेडी कई जगह पर चल भी रहा है, तो मैं एग्जैक्टली किया हुआ है। मेरी दरखास्त आपसे ये होगी कि अगर इस पर आप मेरी रहनुमाई फरमा सकें कि हम ये पॉलिसी कैसे वजह कर सकते हैं और इस पे अमल दरामद कैसे करवा सकते हैं कि जिसमें, जिस तरह मैंने बात की कि ड्यूरिंग सर्विस किसी की डेथ हो वो पॉलिसी तो अमल दरामद हम कराएंगे और वो बनवाएंगे, मगर ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है या सस्टेनेबिलिटी है, कई चैनल्स वाकई बहुत शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, कुछ बंद भी हो रहे हैं, इसको कैसे डील करना है? क्या ये मुश्तरका डिमांड तमाम बॉडीज की तरफ से आनी चाहिए कि जी रेट्स की इंक्रीज हो 2019 के लेवल पे जो उससे पहले एग्जिस्ट करती थी, क्या कोई और तरीकेकार होना चाहिए? तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गौर तलब हल तलब मामला है जिस पे आपकी रहनुमाई मुझे दरकार होगी। इसके साथ साथ जो आपने बात की बिल्डिंग के हवाले से, उस पर आप मुझे तजवीज़ दें, मैं मोहसिन नकवी साहब के पास खुद जाऊँगा, आपको साथ लेके जाऊँगा और आपके साथ ही बैठूंगा जो राइट साइड पे होता है, तो हम ये मामला बिल्कुल टेकअप करते हैं। और देखिए ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो जिस हद तक हो सके वो ज़रूर इसको करे, और कंटेनर में गर्मी सर्दी दोनों ज़्यादा लगती हैं तो इस बात का भी मुझे अंदाज़ा है, तो इसको बिल्कुल बिल्कुल टेकअप करते हैं। इसके अलावा रेलवे वाला मामला हनीफ अब्बासी साहब से मैं आज बात करता हूँ, ऑफ हैंड तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे बातचीत करके इस मामले को हल करूं। और देखिए मैं चाहता हूं कि ये हम आज एक सेशन किया है, हम महीने में 2-3 सेशन कर लिया करें जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों को साथ ले आया करें, बेशक ये सारे आपकी कम्युनिटी बैठी है, लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं तजवीज़ देने वाले, मतलब ये तारिक साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, तारिक समैर साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, राशिद भाई बैठे हैं सीनियर आदमी है, वो पीछे शाकिर खड़ा है, ये जावेद साहब खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बड़ी अच्छी इनपुट दे सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें लोगों की इनपुट भी आए और आप जो तजवीज़ दें उस पर फिर अमल दरामद के हवाले से हम आगे चलें, आगे बढ़ें और मीडिया की स्पेस को मज़ीद बढ़ाएं। देखें ये माशरा ज़िंदा रहेगा जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की स्पेस रहेगी, क्योंकि देखिए आज भी एडिटोरियल बोर्ड्स हैं, आज भी एडिटोरियल पॉलिसी है, आज भी वो लोग मौजूद हैं। ये हाज साहब तो माशाल्लाह बहुत वैल्यूबल इंसान है कि देखें इन्होंने कई दहाइयों पर वक्त का उतार चढ़ाव भी देखा है, फिर उन्होंने जो मीडिया हाउसेज हैं उनको बनते देखा है इस मुल्क के अंदर, और देखिए जो
ایک زمانہ ہوتا تھا نا کہ استاد جو تھا

0: एडिटर है, वो सीनियर रिपोर्टर है, तो वो पूरी ट्रेनिंग करता था और सख्ती के साथ करता था कि क्या खबर आज लेके आए हो और उस खबर की आगे किस तरह वो छपनी है, किस तरह एयर होनी है और क्या उस खबर को लगाते हुए जिसके बारे में है या जिस इशू के बारे में है तमाम वर्जन लिए गए हैं। देखिए, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत एक तवाज़न माशरे के अंदर कायम था। अगर खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कभी इस मुल्क के अंदर ख़त्म हुए तो ये माशरा भी उसके साथ ख़त्म होगा, क्योंकि जो अकदार हैं वो ज़िंदा इस वजह से हैं। तो मैं डिजिटल मीडिया की अहमियत को उसकी नफ़ी नहीं करना चाहता, ना मैं समझता हूँ कि वो एक लेस इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, हमने भी डिजिटल सिस्टम्स बनाए हैं, मगर ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट का, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको आगे प्रमोट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और बतौर वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात ये मेरी पॉलिसी है। तो ये चंद मारूजात थी जो मैं चाहता था कि मैं आपके सामने पेश करूं।
1: फेज़ टू पे भी ज़रा थोड़ा बता दूँ
0: जी, फेज़ टू के वाले से हम पंजाब गवर्नमेंट से उस पर बात कर लेते हैं जी और उनसे ये टेकअप करते हैं। मैं अजमा बुखारी साहिबा से आज ही बात करता हूँ, मैं आपको उस पर वापसी बताता हूँ। तो ये डिस्कशन जारी रहनी चाहिए और कोशिश होगी कि जो ऐलानात आज किए गए हैं मैं इसकी वीकली प्रोग्रेस दूँ ताकि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकें। आपका फिर बहुत शुक्रिया आपने वेबसाइट की लॉन्च के लिए मुझे बुलाया।
2: कल जी
0: मैं ये कह रहा हूँ ना, आप अगर काइंडली जो भी पॉलिसी आप मेरे पास लेके आते हैं और मैं पीबीए से टेकअप करता हूँ, एपीएनएस से करता हूँ, ये पॉइंट उसमें डलवाएं और ये पॉइंट उसमें होना चाहिए। मैंने जुबैरी साहब से बात की थी और लास्ट टाइम जब सुनो वाला मामला हुआ तो मैंने जुबैरी साहब से ही दरख्वास्त की, उन्होंने कुछ पेंडेंसी पिछली क्लियर की, कुछ की। तो मैं ये नवीन साहब खड़े, मैं इनको कहूँगा मेरा पैगाम हम तक पहुँचाएं और बाकी पेंडेंसी के वजह से बीमारी मदद करें, जहां मेरी जरूरत है मुझे बताएं, मैं भी बात करता हूं।
3: शकील करार साहब, एक सेकंड। शकील
0: जी, शकील साहब अच्छा, उन्होंने मुझे बैंस करता हूं जी, बिल्कुल सुनो टीवी की मैनेजमेंट मेरे पास इस्लामाबाद आई थी, उन्होंने 12 लोगों को बहाल किया जिसमें मुख्तलिफ शहरों में उनके लोग थे जिसमें मीडिया वर्कर ज़्यादा थे और इस बात की मैंने उनसे गारंटी ली कि अब वो किसी को और बेरोज़गार नहीं करेंगे। और देखें, मैं प्रेशर बहुत कम लेता हूं और जिस दिन ये मैंने फ़ैसला किया और मैं प्रेस गैलरी में आपके पास आया नेशनल असम्बली में, तो मैंने वहीं पर उस माहौल को देखते हुए, आपके सेंटिमेंट को देखते हुए फैसला किया कि इश्तहार बंद है जब तक इस पर बातचीत नहीं होती। उसका नतीजा निकला, मज़ीद भी कोशिश करेंगे। और देखिए, मेरी ये कोशिश है कि जो साथी यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, मेरी भी कैपेसिटी है, बाकी कुछ और इदारों से भी हम बात करेंगे चैनल से कि उनको एडजस्ट ज़रूर किया जाए, तो ये इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी होगी। आयशा नाज का मैंने नाम ले लिया, मैं माजरा चाहता हूँ उसके लिए। नहीं, मैं आयशा नाज साहिबा, मैं बड़ा आपकी कदर करता हूं और आपको इस बात का पता भी है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक तवाज़ुन के साथ चला जाए, और बल्कि मेरी तो सारी मिनिस्ट्री फीमेल डोमिनेटेड है। मेरी पिछली सेक्रेटरी खातून थी, उससे पिछली सेक्रेटरी खातून थी, ये पीआईए खातून बैठी हुई है, तो मैं तो मेरे आधे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो खवातीन है, तो ये तो फीमेल डोमिनेटेड मिनिस्ट्री है, मैं तो माइनॉरिटी में मिनिस्ट्री के अंदर।
4: लास्ट सवाल मैडम,
0: अल्लाह खैर करे, मैं मोहसिन साहब जैसे ही आते मैं आपको लेके चलता हूँ साथ। जी मैडम, मैं इसीलिए ये बात की, मैं ऑलरेडी आपकी बात के जवाब दे चुका हूँ और मैं यही बात कर चुका हूँ कि ये इसके लिए तमाम जो बॉडीज हैं वो बैठे, मुझे बताएं, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा जाके, कोई ऐसा मसला
4: नहीं। डॉक्टर साहब,
3: एक सेकंड मैडम, बस एक मिनट अपनी बारी पे करें इंतजार, एक मिनट। साबिया कमाल,
5: डॉक्टर साबिया कमाल, प्रेस क्लब के एक्टिव के वर्कर सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रेस क्लब को
0: بہت شکریہ میڈم. پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں صاحبان میرے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں. میں تو اس بات کی خواہش کر رہا تھا کہ میں آ کے حلف ان سے آ کے لوں, تو وہ اس میں تو یہ بالکل جس طرح میرا گھر ہے, میرے بھائی ہیں, اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جو تنخواہوں کی اور ڈیوز کی بات ہوئی, دیکھیں میرا اس پہ وہی سٹانس ہے کہ میں بغیر کہیں بھی یہ لڑائی لڑ رہا تھا, اور ہر پی بی اے کی, ہر اے پی این ایس کی میٹنگ میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے. اور ہم نے بہت حد تک پیمنٹس کو بھی مشروط کیا. جو پیمنٹس آتی ہیں تو, اور مالکان اب خود عادت بن گئی ہے, عید سے پہلے آئیں گے, رمضان سے پہلے آئیں گے, جی عید قریب آ رہی ہے, ہم نے پیمنٹس امپلائیز کی کرنی ہے, آپ کائنڈلی ہمارے وہ ڈیوز کلیئر کریں. اور میں یہی کوشش ہوتی ہے, ہم نے پروسیس بھی تھوڑا شارٹ کیا ہے ان کی پیمنٹس کا. مگر یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس کو مکمل طور پہ اس چیز کے ساتھ لنک ہونا چاہیے, اس کو کریں گے. جو اے پی پی والا معاملہ ہے, دیکھیں پی آئی او تو پہلے وہ تھے, اب یہ ہیں, تو یہ میں ان کو کہتا ہوں میڈم رئیس صاحب کو آپ درخواست دیں اور یہ مجھے پھر اس پہ بریف کریں گے, معاملے کو آگے لے کے چلیں.
4: ایک منٹ میں یہاں پہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں. میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءالرحمٰن تارڑ صاحب کو نشر پریس کلب کی طرف سے آزادی ممبر شپ دینے کا اعلان کرتا ہوں. آج سے یہ ہمارے آزادی ممبر ہیں اور انشاءاللہ یہ ان کا اپنا گھر ہے, تو ظاہر ہے اب اس گھر کو سنوارنے کے لیے اس کے لیے کام کرنا, ان کا بھی ہماری طرح, باقی سب کے بھی.
5: وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نیشنل پریس کلب کی ویب سائٹ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نیشنل پریس کلب انتہائی اہمیت کا حامل ہے, ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن اب وقت کی ضرورت ہے. عطاء اللہ تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شارٹ کورسز کے ذریعے صحافیوں کی استعداد کار میں اضافہ کریں گے.

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवाना महताब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर दिफा ने तनाज़ा जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय वजीर दिफा के हालिया गैर जिम्मेदाराना बयानात को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 78वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और तरूबा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स का खेल 199 रन 3 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think.

मिथक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मिथक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मिथक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मिथक सा और चुप।

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भरना

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर

0: ओके जी, वक्त गुजर जाएगा ऐसे ही, और ये वक्त कभी लॉन्च कर नहीं आएगा। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: तारुफ करवा दे, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं साजिद बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी?
1: अल्लाह का एहसान है
0: जी।
1: तो यूसुफ भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। तो आपने जो सवाल किया था कि स्कूल में कोई चीज लेके आ जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल मैं तो खुद ब्लाइंड हूँ, तो मैं तो इस तरह का तो फूल तो कुछ भी नहीं लेके आता हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रेंड है ना वो घड़ी
0: है। ट्रेंड जो है वो घड़ियों का है।
1: हाँ, घड़ियां लोग फूल में लेके आ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर आजकल आपको पता है हर किस्म का सिस्टम होता है, चाहे टाइम देख लो कुछ भी हो, सब चीज मोबाइल के अंदर है। घड़ियां लोग जो लेके आते हैं मेरे हिसाब से ये फूल ही है। हाँ, जो दीवार वाली घड़ी है वो तो घर के अंदर लगी होनी चाहिए, उसका मसला नहीं है। जो बाजू के लिए, बांधने के लिए, डैश ड्रामे के लिए, वो अच्छी नहीं चाहिए, होनी चाहिए।
0: सही हो गया, ठीक हो गया।
1: यूसुफ भाई, आप अभी बता रहे थे कि वॉइस से भी बंदा पेशे कमा सकता है,
0: क्या करना पड़ता है? और दरवाजा जोर से, मतलब दरवाजे को ओपन करें,
1: अच्छा,
0: वहां पे उंगली फंसाएं और जोर से उसको बंद करें।
1: अच्छा। नहीं, अगर आप कुछ बता सकते, मैं खुद ब्लाइंड हूँ ना, तो देखो बंदा अपना काम करता रहे वो अच्छा होता है।
0: लेकिन उसमें ना एक जो चीज है वो है देख के पढ़ने वाली, जो पढ़ के फिर उसको रीड करना है, और पंजाबी प्रॉपर जो पंजाबी का थोनू समझ आती है ना, तो मैं थोड़े ना पंजाबी गल करांगा कि कितना दी पंजाबी सानू चाहिए होंगी कि भाई तुसी इस बारे च गल कर सकते हो, इस थोड़े को सर्विस है, और मतलब इदा दी पंजाबी सानू चाहिए है। तो वो जो कुछ मेरा खुद ताल्लुक जो है, मैं पता तो काफ़ी सारे लोगों, मैं मरी से स्पेशली बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सेंट है ना वो काफ़ी सारे शायद मैं मीडिया में बहुत पहले आ गया था, फिर कुछ चीज़ें सीखी हैं, फिर कुछ मेरे दोस्त जो थे वो प्रॉपर जो है वो पंजाबी बोलने वाले थे, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने उनसे अच्छी पंजाबी सीखी है।
1: क्या आप पटवारी नहीं बोल सकते?
0: जी जी, क्यों नहीं बोल सकते पटवारी, असा की कड़ा कोई मतलब कड़ोल पड़ा है पंजाब पटवारी बोल रहे हैं। हाँ जी।
1: तो आपको 101 ज्वाइन किए कितना अर्सा हो गया?
0: मुझे 101 ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 21 साल हो गए।
1: 21 साल? लेकिन जो पुराने आरजे थे, रिजवान अली अहमद, खुरब भाई, ये सब
0: जी
1: तो पुराने चले गए, सिर्फ साहिल भाई हैं, एक आप है, जैसे फायदा बशीर होती थी वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करती थी।
0: जी जी, सब सब अच्छे थे,
1: आजकल सब आगे पीछे हो गए।
0: इनसे भी पुराने थे, मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ।
1: हाँ, फायदा थी थी ये दिखते जो नहीं है, ये जुखरत भाई और रिजवान अली अहमद
0: जी,
1: और वो नजीब पलन, क्या उसका सत्ती इसका नाम आगे आता था, उसका नाम मैं भूल गया,
0: अहमद नजीब सत्ती।
1: जी जी, वो प्रोग्राम करते होते थे। मैं तो वन ओवन सुनता रहता हूँ, कॉल देखा ठीक है, मैं बहुत काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक दफा कॉल मिल जाए ठीक है, हफ्ते में एक दफा कॉल कर लो कॉल, क्योंकि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए,
0: हाँ ना, वैसे
1: उनको भी मौका मिलना चाहिए,
0: सेहत के लिए भी अच्छा होता है ना वैसे ही।
1: इंजॉय
0: करना चाहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप लगाएंगे, और वक्त कितनी जल्दी से जो है वो गुजर जाता है, और ये वक्त लौट के नहीं आएगा।
2: तेरा चर्चा नहीं करते
0: आगे तुसी।

0: 051111001 मतलब ये ना कि पता चले मैनेजमेंट मेनू पकड़ के ना गोला मार दे। लेकिन मैंने एक ऑफर किया, अगर आप अवेल करना चाहें तो आप मोर देन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से?
1: मैं
0: उस्मान बोलना पे अजरोई चू। अजरो तो बार हुई या स्पेशल अजरोई चू?
1: अजरो नाल गांव की तेतियो थोबो बोलने
0: हैं। आला चंगा करने हो, तबीयत से ता ठीक ने?
1: शुक्र जी अल्लाह ना ठीक ठाक। ये सो भाई सुनाओ, आप ठीक ठाक हो?
0: शुक्र अल्लाह ना जी, तब ता ठीक ने।
1: हां जी शुक्र जी अल्लाह ना, गर्मी होई तो ये दो वडी
0: केड़ी हुण ते बारिश होई है नियां
1: ना यार, सारी बारिश निकल सो मुक गई ते तो मुता जोड़ी है।
0: हाँ ना जी, ये भी तेला ना निजाम है ना, कितने बारिश की जरूरत है तो कितने धूप की जरूरत है।
1: ये काले यूसुफ भाई, ये यूसुफ भाई को मैचे ने कोई 150 रुपए आले
0: किसने?
1: मैं जड़ा लगे है 300 रुपए आले।
0: मैं जड़ा लगे जी सूरत हाल है कि दूसरी इनिंग जड़ी है शुरू हो चुकी है।
1: अच्छा,
0: कितने कुछ रन हो गए? आपकी कॉल का। लोग मैचेस, अच्छा टेस्ट मैच पे भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तीन सौ ग्यारह रन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए। 282 पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो चुकी थी और मजीद सेकेंड इनिंग जो है वो उसका आगाज हुआ जाता है। डे थ्री है, सेशन जो है वो सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। 25 रन के बस 2 विकेटें गिर चुकी हैं वेस्ट इंडीज की। इतना ठीक है या मजीद बताऊँ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। कौन बोल रहे हैं जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उधर से पहले सुन ले, जहां से वहां से आवाज आ रही, पहले वहां से सुन ले।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: सॉरी जी, मुझे समझ नहीं आई कॉल मेरी।
0: अच्छा, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: ये फजलुर रहमान इस्लाम बात से।
0: कैसे हैं आप? ठीक है, तभी से ठीक है। अच्छा, मैं हुक्म करूं, मैंने कॉल किया।
1: ओ, आप अक्सर कहा करते हैं कि
0: क्या
1: और उसको भी कोई बात करने दिया करें।
0: होय होय होय, माशाल्लाह माशाल्लाह, मां सदके जाए। तो क्या करते हैं आप?
1: बस आपका प्रोग्राम
0: है। ओ, इतना थोड़ी मैं 24 घंटे प्रोग्राम करता हूँ।
1: आप नहीं करते, वन मान तो जारी
0: रहता है। हाँ, ये भी है मतलब। ठीक है, और कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना हो फिर भी आप खरीद लेते हैं, वो ऐसी क्या चीज है?
1: मोहब्बत और गम कोशिश करते हैं अगर मिल जाए
0: तो। आए, इतने भी टिपिकल वो, ये अब इससे बाहर निकले, इन चीजों से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे ना, वो गम नहीं मोहब्बत, ठीक है वो अच्छी चीज है।
1: अच्छी चीज,
0: गम नहीं लगाना।
1: अगर किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, कपड़े अगर अच्छे लग गए 200-300, जी चाहता है सब खरीद लें, यार खरीद लेते हैं।
0: अच्छा ठीक है जी, सही हो गया, ये भी सही है।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। 051111001। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज यहाँ पे अच्छी लग रही है या रेडियो पे सुनते हुए आपको ज्यादा अच्छी लग रही है?
2: मैं रेडियो बंद कर देता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मिल सकेगी, लेकिन जस्ट अ मिनट प्लीज।
0: ओके,
2: या ये सही है
0: जी? अब आपको मतलब क्लियर सुनाई दे रही है मेरी वॉइस?
2: बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तारुफ करवा दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
2: मैं मजहर बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से।
0: मजहर बात कर रहे हैं रावलपिंडी से, क्या करते हैं मजहर भाई आप?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, करते क्या आप?
2: मैं क्या करता हूँ, मेरा ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी फील्ड से है।
0: हॉस्पिटैलिटी या हॉस्पिटल फील्ड से है?
2: नहीं नहीं नहीं हॉस्पिटैलिटी।
0: हॉस्पिटैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी?
2: तो जी हाँ, मैंने काफी अरसे के बाद रेडियो ऑन किया, एक कहने के यादगार था मेरे दादा का, और मैंने उसको रिपेयर करवाया और बहुत टाइम के बाद रेडियो सुना। मैं सुना करता था, मुझे एग्जैक्ट अगर मैं बता सकूं तो 2007-8 तक। तो उस वक्त राजा हैदर प्रोग्राम किया करते थे, शायद
0: जी जी
2: पे ही थे, या
0: नहीं नहीं 101 पे वो नहीं थे, वो 101 पे नहीं थे, 101 पे उस वक्त थे नासिर भाई थे, अली भाई थे, ख्वाजा कामरान आते
2: जी, ख्वाजा कामरान बिल्कुल, उन्हें सुना करते थे हम लोग
0: जी जी।
2: और
0: अहमद बिलाल,
2: रेडियो का जमाना ही तकरीबन चला गया, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है और इससे बहुत बहुत चीजें सीखी है। और वो टीनेज में या बचपन कह रहे हैं उसमें हमने बहुत टाइम दिया रेडियो को। तो आपका शो मैंने वैसे ऑन किया, काफी देर में इसको चेक कर रहा था, आपका शो मैं काफी देर से सुन रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा सुन के, तो मुझे लगा कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। रावलपिंडी से मजहर भाई, और हॉस्पिटैलिटी आपने बताई है कि मतलब कोई रेस्टोरेंट है आपका?
2: जी हाँ, मैं होटल में जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट मेरा अपना नहीं है।
0: अच्छा, जॉब करते हैं
2: जी, मैं एज अ मैनेजर एक काफी अच्छे होटल में जॉब करता हूँ।
0: मैं भी अच्छे होटल में, मतलब हम जाते हैं लेकिन हम ऐसा बंदा ढूंढते हैं जहाँ से हमें डिस्काउंट ज्यादा मिल जाए।
2: चले मैं आपको पहचान लूंगा, फिर मैं आपको दे दूंगा,
0: आप
2: अच्छे होंगे, आप वहाँ ला देंगे।
0: सही हो गया, ठीक हो गया,
2: ठीक हो गया। तो कुछ खास टॉपिक चल रहा है शो का या
0: नहीं? टॉपिक यह है कि कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना हो फिर भी आप खरीद लेते हैं उसे।
2: हाँ, ये सवाल काफी अच्छा है। असल में मेरी, मैं अगर कहूँ तो मैं परफ्यूम्स, मुझे नहीं भी चाहिए होता मैं फिर भी खरीद लेता हूँ।
0: मुझे ना आजकल किसी ने एक टेस्टर दिया था, मेरे एक दोस्त हैं तो रेडियो में ही होते हैं, मुझे क्योंकि फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं जो शुरू से लगाता था ना वो एक ऐसी थी कि मैं जहां भी चला जाऊं उसके बाद वो बंदा मुझे लाजमी कॉल करता था, यार या तो मुझे मंगवा के दें या मुझे इसका नाम बताएं।
2: और वो वापस कभी भी नहीं मिलता,
0: वो वापस नहीं मिलता। लेकिन अभी मुझे जो मेरे एक दोस्त ने वो टेस्टर से मुझे चेक कराया ना, अब वो मैं ढूंढ ढूंढ के उसके रिप्लेसमेंट में या उसे कुछ मिलता जुलता, लेकिन अब एक उनकी मोस्टली वो ऑनलाइन जो है वो डील करते हैं, लेकिन फिजिकली उनका एक ही स्टोर है, वो आई थिंक मुल्तान में है शायद। तो ऑनलाइन मैंने फिर अभी थोड़ा सा उनको की है, एक ऑफर डाली हुई है, चले अगर आ जाता है तो।
2: उम्मीद है कि आप कोशिश जारी रखेंगे तो मिल जाएगा। तो बाकी इसके अलावा दूसरी चीज हार्डवेयर के टूल्स हैं, मेरा बचपन से उनसे लगाव है बहुत ज्यादा। कुछ भी हो, मेरी जरूरत का नहीं हो और मैंने घर भरा हुआ खरीद खरीद के, इवन जो बिल्कुल मेरे काम की चीजें नहीं है, जो मुझे पता है कि मुझे कभी दरख्त नहीं काटना, लेकिन मैंने चेनसॉ मशीन भी खरीदी।
0: मतलब मेरी तरह एक शेड बनाना था, पूछा बंदे से इस पे कितना मतलब एक्सपेंस है, उन्होंने कहा मटेरियल इतने का है और ये इतना इसका खर्चा आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं गया जाके मैंने अपना वेल्डिंग प्लांट ही खुद खरीद के लेके आ गया।
2: और वो भी वही चीज है ना कि आपको जिस चीज से लगाव हो, मतलब ये है कि खुशबू से प्यार, मतलब ये बड़ी एक यूनिक चीज होती है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, मैं समझता हूँ कि बेचारे वो कैसे गुजारा करते होंगे। तो मेरी, आपने पूछा तो मैंने आपसे यही, मतलब मैं समझता हूँ, सोचना भी नहीं पड़ा मुझे, ऐसा ही है हमेशा जो है ना, मैं खुशबू में खरीद लेता हूँ और मेरी पूरी शेल्फ जो है ना इसमें भरी रहती है, जो मेरे काम की नहीं भी होती फिर भी मैं उन्हें यूज करता हूँ।
0: सही तो हो गया, ठीक हो गया,
2: बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी। थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। 0511100101

ओके जी, खाने पीने की चीजों की बात हो रही थी तो चिकन पुलाव जो है जी आपने खा लिया और कह रहे हैं कि न्यू सूट्स मैं भी लेता हूँ जब भी शॉपिंग के लिए जाएं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, खरीद लेनी चाहिए जो आपको चीज जो है वो पसंद आ जाए। आई लाइक टू वेयर न्यू एंड न्यू।

आपकी जो हमारे भाई सुन रहे थे मैच के हवाले से, तो तीसरा खिलाड़ी अब से कुछ देर पहले जो है वो आउट हुआ। आप देखें कि चौथे की बारी जो है वो लगी है कि नहीं लगी। एक रिव्यू जो है वो लिया गया है, देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। और

कुछ लेट जो है वो 90s का म्यूजिक, स्पेशली फिल्मी म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा पहले सुना जाता था, लेकिन अब बहुत कम कम जो है वो शामिल किया जाता है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा अच्छा अच्छा अच्छा सा म्यूजिक लाइव है, हो जाता है जी, कोई बात नहीं, इतना परेशान ना हुआ करें।

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Pakistan. क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फारे वन होंगे. ऑलराइट जी, मैं हूं आपके साथ हसनैन रज़ा, ऑल द वे फ्रॉम हिट टॉक रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज एफएम 101. और आप इसे सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्टूडियो से. ऑलराइट जी, हमारी आवाज इस टाइम सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान दुबई. इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो radio.ju.pk पर. इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त इस टाइम हमें मोबाइल इंटरनेट पे सुन रहे हैं radio.ju.pk/mobile पर. और अगर तो आप अपने रेडियो सेसा मोबाइल सेस पे सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ आपने ट्यून किया प्योर पाकिस्तानी चैनल एफएम 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. Alright जी, सबसे पहले डेट चेंज हो चुकी है, आज 28th of July 2026 ट्यूजडे स्टार्ट हो चुके हैं. हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि ट्यूजडे का सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, और उम्मीद करते हैं कि वीक का स्टार्ट जारी है, मंडे आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा जैसा कि आपने सोचा होगा. और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरता तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आने वाले दिन भी आपके अच्छे नहीं गुजरेंगे. सब डिपेंड करता है आपके माइंड सेट के ऊपर. पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा. सो अच्छा है ना, पॉजिटिव सोच के लाइफ को हम अच्छा बना लें. एनीवेज, यू और बताएं कि पूरा हफ्ता, इनफैक्ट दो हफ्ते जो है आप कैसे गुजरे, क्या करते रहे हो, क्या एक्टिविटीज आपकी रही हैं, कहाँ घूमते फिरते रहे हो, कहाँ आउटिंग करते रहे हो, कहाँ खाने खाते रहे हो, और कहाँ घूम फिर के मौसम एंजॉय करते रहे हो. मतलब कि कभी बारिश हो रही थी और कभी गर्मी हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन स्टिल लोग जो हैं, आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो घूमने फिरने की काफ़ी शौकीन है, इसलिए नॉर्दर्न एरियाज और ये मरी नथा गली की साइड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो इट मीन्स कि उनमें हो सकता है ना आप भी हो. लास्ट वीक शो नहीं हुआ था, कुछ ही देर में आपको बताऊंगा क्यों लास्ट वीक शो जो है वो नहीं हुआ था. और आई नो कि आप सब वेट कर रहे होंगे कि शो होगा, लेकिन समटाइम्स ऐसे सिचुएशंस जो है वो बन जाती हैं कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग तक आना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, तो अब यकीन आपके चेहरों के मुस्कुराहट जो है वो आ गई होगी, और कोशिश करेंगे हमारा जो ये दो घंटे का साथ जो है वो बहुत अच्छा गुजरे और इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकें. क्या जी, जैसा मौसम ऐसे अच्छा है, मतलब कि पिछले दो तीन रोज से मौसम जो है वो काफी बेहतर है. सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जिंदगियां जो है वो इसी तरह अच्छी गुजर रही होंगी, और आप लोग जो है वो अपना अच्छा टाइम जो है गुजार रहे होंगे, और साथ साथ जो है ज़िंदगी के मामलात जो है वो आपके चल रहे होंगे. और क्योंकि ब्रेक जो है वो कभी लगनी नहीं चाहिए, लाइफ जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जहाँ पर फुल स्टॉप लग जाए ना, वहाँ पर फिर जब ब्रेक लग जाती है तो फिर यह है कि काफ़ी मामलात जो है वो ख़राब हो जाते हैं.

Anyways, सबसे पहले आप प्रोग्राम में बता दें किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमारा हमेशा की तरह नंबर है 051-111-111 एंड दूसरा नंबर जो है लास्ट में नोट किया करें 051-920-2540। इसके अलावा जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो SMS मैसेज के थ्रू। अभी से मोबाइल फोन की SMS की ऑप्शन में जाओ, वहां पे लिखो 101 एक स्पेस, तो अपना मैसेज नाम शहर के नाम लेकर 4471 पर अपने तमाम SMS मैसेज आप हमें सेंड करोगे। और इसके अलावा जी फेसबुक पे अगर आपने हमारा ऑफिशियल फैन पेज नहीं ज्वाइन किया हुआ, जल्दी से ज्वाइन करो www.facebook.com/fm101channelpakistan, जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट आएगी कि 12 to 2 am आपको मेरा साथ रहेगा FM Moro International में। वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, खासतौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो।

एनीवेज जी प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, और अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रैक जो है प्रोग्राम में शामिल करने के बाद, आजकल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुस्तफा जाहिद के सॉन्ग्स जो है वो काफी ज्यादा शेयर हो रहे हैं, और उनको बहुत सारी पोस्ट में टैग भी किया जा रहा है। इसलिए हम भी मुस्तफा जाहिद का ट्रैक जो है प्रोग्राम में हम प्ले करेंगे फर्स्ट ट्रैक। और आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो हमेशा की तरह, जैसा मैं कहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, कंफ्यूज हो, खुश हो, कोई सरप्राइज मिला है, एक्साइटेड हो, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या यार क्या हो रहा है लाइफ में, सो एनीथिंग आप लिख के भेज सकते हो 101 एक्सप्रेस मैसेज दान शाह के नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप खुश हो तो आपकी खुशी में हम भी शरीक हो जाए, कोई मसला चल रहा है तो हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। और उसके साथ साथ आपको पता है लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन एक गरम गरम चाय का कप जो है वो जरूर होना चाहिए, कड़क वाला जो है, और चाय नहीं तो कॉफी जरूर होनी चाहिए। और जो लोग थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं कहते हैं नहीं और हम तो ग्रीन टी पियेंगे, तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, जल्दी से जाओ बना के लाओ। इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसन रजाको, मेरा साथ ठीक रात के 2 बजे तक जाना आप देखे ही नहीं, क्योंकि हम वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद।

आपको वेलकम बैक एट एफएम वरुण इंटरनेशनल में, आप मुस्तफा जायद की आवाज में आप ट्रैक सुन रहे थे। एनीवेज जी, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको बता दूं आज के प्रोग्राम में क्या सवाल आपसे करने जा रहा हूं। सो बड़ा डिफरेंट सवाल है लेकिन बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप तो मुझे बताना है कभी आपको दिन में तारे नजर आए हैं। सो बड़ा सिंपल सवाल है, आपको कभी दिन में तारे नजर आए हैं तो आप मुझे इसका जवाब दोगे और आप साथ मुझे बताओगे कैसे। सो जल्दी से मोबाइल फोन की एसएमएस के ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101 स्पेस, तो आप मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर अपने एसएमएस मैसेज सेंड करो, साथ फेसबुक पे पार्टिसिपेट करो, www.facebook.com/fm101 पाकिस्तान।

ये सवाल मेरे प्रोग्राम में क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि अभी पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मेरे जो है सीधे हाथ की फिंगर के ऊपर चोट लग गई दिन के टाइम जो है। सो वो इतनी जोर की चोट लगी कि मुझे दिन के अंदर जो है वो तारे नजर आ गए। तो इसलिए मैंने आप सोचा कि जरा आपसे भी पूछूं कि आपको कभी दिन में तारे नजर आए हैं।

क्या जी, अभी अब तो खैर 1.5-2 हफ्ते गुजर गए हैं, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था वो भी गुजर गया है और स्पेन जो है वो चैंपियन बन चुका है। बहुत सारे लोग स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम जैसे गरीब लोग जो है वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे, जिनसे जो है फाइनल के अंदर जो है वो खेला ही नहीं गया। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी ओरिजिनल गेम जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी अर्जेंटीना की ऐसी गेम नहीं देखी जिसमें उनके वो बॉल ही नहीं आ रही थी, वो मतलब के कोई गोल में शूट ही नहीं गई। सो स्पेन जो है वो टोटल गेम में डोमिनेट करती रही है और 1-0 से मैच जो है वो जीत गई और चैंपियन बन गई 2026 की। खैर बातें तो बड़ी होती रही, सोशल मीडिया पे बड़ी डिस्कशंस होती रही, बहुत कुछ लोग जो है अपना अपना फीडबैक जो है वो देते रहे, लेकिन जो भी बात है, जो कुछ भी हो जाए, जब आखिर में कोई जीत जाता है तो वो मतलब विन उसकी होती है और चैंपियन बन जाता है। सो बाद में सारी बातें रह जाती हैं, ऐसा हो जाता है इफ एंड बट्स दिस एंड दैट, सारा कुछ जो है वो पीछे रह जाता है।

अच्छा जी, शुरू में थोड़ी सी बात कर लेते, फिर कोई देखो कह देगा आप क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहे। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच जो है वो चल रहा है, टेस्ट मैच जो है, और वैसे मैं मैच देख तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में 311 रन बनाए, और उसके बाद पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स पे 282 रन बनाए। फिर अभी वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग चल रही है, 30 for 3 है, और ये है कि अभी 59 रन की लीड जो है वेस्ट इंडीज़ को है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की टीम में सिर्फ मामूल हक और शान मसूद ने स्कोर किया, बाकी कोई भी प्लेयर स्कोर नहीं कर सका फर्स्ट इनिंग्स में। और ये है कि मोहम्मद अली ने 4 विकेट्स लीं, अब्बास ने 3 विकेट्स लीं, और ऐसे जो है अभी मैच चल रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, और अब आपको स्कोर भी पता चल गया होगा कि क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का हाल चल रहा है इस टाइम। एनीवेज मैं शो के लिए क्यों नहीं आया था लास्ट वीक, वो मैं सबसे पहले बात कर लूँ। मैं शो के लिए इसलिए नहीं आया था कि मैं तैयार था शो पे आने के लिए, लेकिन क्योंकि ईरान का डेलीगेशन जो है वो आया हुआ था, जिसकी वजह से रोड्स जो है वो काफ़ी चौक थी, और जहाँ से मैंने आना था वहाँ पर तकरीबन एक घंटे से ट्रैफिक जो है वो जैम थी। तो मैं अगर आ जाता तो मैं भी उसमें फिर उस लाइन में खड़ा हो जाता। तो फिर मैंने काफ़ी दोस्तों से पूछा, काफ़ी पूछने के बाद मुझे पता चला कि इस टाइम जो है वो ठीक नहीं है शो के लिए आना, तो जिसकी वजह से फिर मैं शो के लिए नहीं आया। क्योंकि फिर मैं यही हो रहा था कि मैं मेरे जो दो घंटे थे मैं ट्रैफिक के अंदर स्टक रहता, और फिर फ़ायदा नहीं होना था ना, तो इसलिए मैंने कहा फिर मैं शो के लिए नहीं आता हूँ, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, नींद पूरी कर लेता हूँ। आपको पता था कि हम लोगों की नींद जो है वो वैसी पूरी नहीं होती। अच्छा, नींद एक ऐसी चीज़ है, मेरे पिछले दिनों किसी से बात भी हो रही थी कि एक दोस्त कहता कि यार 7-8 घंटे जो है सोना ही चाहिए, बिल्कुल सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए। आजकल के दौर में मैं कहता हूँ 5-6 घंटे जो सो लेना वो मतलब कामयाब है, क्योंकि आजकल हम लोगों की लाइफ जो है ऐसी कॉम्प्लेक्स हो गई है, ऐसी मुश्किल हमने खुद बना ली है कि एक तो मोबाइल फ़ोन, ये तो सबसे बड़ी रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ऐप्स आ गई हैं कि हम वो ऐप्स ही इस्तेमाल करते रहे सोशल मीडिया की, कि तो हम एक दो घंटों का तो पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं बस यार 12 बजे मैंने सो जाना है, और 12 बजे एकदम मोबाइल फ़ोन देखते हैं, वो मोबाइल चेक करते करते 1:30-2 बज जाते हैं, और फिर आप सोते, फिर आपने सुबह 6 बजे उठना भी होता है। तो खुद बताओ कि नींद कैसे पूरी हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 9-10 बजे सो जाते हैं, सुबह फजर के टाइम उठ जाते हैं, लेकिन वो कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो रात को लेट नाइट सोते हैं, और फिर सुबह ऑफिसेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए फिर जब जाना होता है, तो ऑब्वियसली आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती है, और फिर आप क्लास के अंदर या ऑफिस के अंदर डेस्क के ऊपर सर रख के नींद पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एकदम या तो टीचर आ जाते हैं या आपके बॉस आ जाते हैं, तुमने रात को नींद पूरी नहीं की क्या। और फिर उसके बाद फिर बहाने शुरू हो जाते हैं। आप मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या बहाने करते हो या करते रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली फिर बहाने तो करने पड़ते हैं ना। अब ये तो आप नहीं बता सकते सर मोबाइल इस्तेमाल करते रहे जिसकी वजह से सो नहीं सके। कुछ लोगों के पास तो चलो बहाना होता है, सर रात को लाइट नहीं थी उसकी वजह से सुबह जो है वो हम उठ नहीं सके, बड़ी देर से लाइट आई थी। लेकिन ये है कि बहाने हर बार चलते भी नहीं है, इसलिए रूटीन जो है बनानी चाहिए, जिसकी अच्छी रूटीन बन जाती है ना तो वो उसके लिए बेस्ट होता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप जल्दी उठते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो हैं वो 12-1 बजे उठने के बाद जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं और हम सुबह सुबह उठ गए। सुबह सुबह कहाँ उठ गए यार, आधा दिन गुजर गया उसके बाद आप उठे हो और दिन का आगाज कर रहे हो आधा दिन गुजरने के बाद। सो ये है कि चले हर एक की अपनी अपनी रूटीन होती है, लेकिन रूटीन फिर भी बेहतर करनी चाहिए अपनी लाजमी। और जितना इंसान बिजी होता है उसको उतना टाइम का ख्याल होता है कि यार मेरा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो उसके हिसाब से वो अपना सारा दिन जो है वो प्लान करके चल रहा होता है कि इस टाइम ये काम जो है मैंने करने हैं। और ऑब्वियसली जिसके पास टाइम मतलब फ्री का टाइम होता है, मतलब कि फ्री बैठने का बहुत टाइम होता है, कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो कहता है कि यार मैं देर से उठूंगा, लेकिन फिर भी आपको जल्दी उठना चाहिए। तो खैर चले जी, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपसे पूछा आज के प्रोग्राम में, मुझे बताएं कि कभी आपको दिन में तारे नजर आए हैं, अगर आए तो मुझे बताएं कैसे। 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। आज
आजकल जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती हैं, और जब ऊपर जाती हैं प्राइसेस तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। और लेकिन इस टाइम मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि ऑब्वियसली जब पेट्रोल जो है उसकी सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली फिर उसका रेट जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। जैसे पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में इस टाइम चल रहा है, इसलिए हर कोई जो है वो दुआ कर रहा है और कोशिश भी कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो मामलात जो हैं वो किसी तरह तय पा जाएं और कोई एक अच्छा एग्रीमेंट जो है वो हो जाए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो इस टाइम पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, उसके साथ साथ ग्रॉसरी की बहुत सारी अशियाँ उनकी प्राइसेस जो है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महंगाई जो आपको देखने को मिल रही है वो वापस जो है वो नॉर्मल की तरफ आए। एनीवेज जी, बातें आपके साथ चलती रहेंगी। अभी मैं एक ट्रैक प्ले कर रहा हूँ और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्योंकि अब बिलाल सईद की आवाज में, और ट्रैक है आधी आधी रात। अब बिलाल सईद को कौन बताए कि हमारे जो सुनने वाले हैं या हमारी जो आजकल की जनरेशन है उनकी आधी आधी रात को आंख नहीं खुलती है, वो सोते ही आधी रात को है। आंख खुलना तो बहुत दूर की बात है ना। एनीवेज कोई बात नहीं, ड्राइव को एंजॉय कीजिएगा जो दोस्त इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली बोरे हाईवेज पे, और साथ सुन रहे हैं एफएम मोरवा इंटरनेशनल को। आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग।

है जिन लिसनर्स, आप वेलकम बैक एट एफएम मोरवा इंटरनेशनल में, और जिन लिसनर्स से भी ट्यूनिंग किया, आप सबको बता चुके कि आज के प्रोग्राम में आपसे सवाल मैंने ये किया, मुझे बताएं कि कभी आपको दिन में तारे नजर आए हैं, अगर आए हैं तो कैसे है? आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो 101X स्पेस मैसेज नाम शेखर नाम लिखकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101shallpakistan पर। और अच्छा वैसे मुझे दिन में तारे एक और बार नजर आए थे, वो कुछ ऐसे था कि मैं एक ना स्विच को ना चल नहीं रहा था, मैंने कहा चलो यार इसको मैं आज खुद ठीक करता हूँ, तो मैंने स्विच बॉक्स को खोल लिया। और अच्छा कभी भी ऐसा काम कर रहा हूँ तो आपने सैंडल्स लाजमी पहनने हैं, ठीक है? तो मैंने जो है वो एकदम से जैसे ही तार को हाथ लगाया ना, तो मुझे इतनी तेज एकदम से करंट लगा कि मेरे होश ठिकाने आ गए एकदम में। तो ये है कि वो मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई मुझे तारे नज़र आ रहे हैं, तो वो करंट इतना तेज़ था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आई डोंट नो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो ऐसे पंगे करता रहता हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग करते हैं यार, कहते हैं यार हम खुद ही जो है ना चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी आदत भी है। सो खैर आपके मैसेज हम साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो कि आप हमें सेंड करें 101X स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101channelpakistan पर। और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। बरिया हमारे साथ हैं, आपने कहा जब हमारा रिजल्ट होता है तब हम हमें दिन में तारे नजर आते हैं, अच्छा और कैसे क्यों, मतलब कि पेपर की तैयारी नहीं की होती और आप आपको फिर उसके बाद इंतजार होता है कि रिजल्ट जो है वो कब आएगा, तो कौन ज़्यादा आपको कौन डांटता है घर में, अम्मी डांटती हैं या आपके वाले साहब जो है वो डांटते हैं अगर रिजल्ट अच्छा ना आए, और ज़्यादा वैसे क्या बात सुनने को मिलती है? और क्योंकि डर तो उसको होता है ना जिसका रिजल्ट जिसने पढ़ा ना हो, जिसने पढ़ा होता है उसको इतना डर नहीं होता, उसको फिक्र होती है कि हाँ मेरे से अच्छी पोजीशन जो है वो किसी और की ना आ जाए। और अच्छा मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि अगर आपकी जो फर्स्ट पोजीशन जिसकी आती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है, और कुछ लोगों को फर्स्ट पोजीशन लेने का ना क्रेज़ होता है, शौक होता है, जुनून होता है कि यार हमारी पोजीशन जो फर्स्ट आनी चाहिए, तो उनको फिक्र रहती है कि यार हमारी पोजीशन सेकंड ना आ जाए, उन लोगों को इस चीज़ की टेंशन होती है, या थर्ड ना आ जाए, तो उनको ये नहीं होता कि उनके घर में कोई डांटेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या ना मैं अच्छी पोजीशन होल्डर जो है वो होते हैं, तो फिक्र तो उनको होती है जो कि मतलब कि बस ठीक है बस लास्ट डे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आखिरी दो तीन दिन और बस जाके पेपर दे आते हैं, और उसके बाद फिर ज़्यादातर वालिद साहब जो है उनकी डांट का इंतज़ार होता है और उनका डर होता है कि उनसे काफ़ी डांट जो है वो पड़ेगी। तो जिस दिन रिजल्ट वाला दिन होता है ना, अगर मार्क्स अच्छे ना आए हो तो उस दिन एक तो मार्क्स की वजह से आपको डांट पड़ती है, उसके अलावा जो पिछले पूरे एक साल कुछ नहीं भी होता ना उसकी भी वजह आपके ऊपर बना कर आपको डांट जो है वो पड़ जाती है। अच्छा इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट किए बुशरा ने अटक से, आपने कहा है कि अचानक मामा की आवाज़ दिन को तारे नज़र आने लगते हैं। ओके अच्छा मामा की आवाज़ अगर अचानक आ जाए ठीक है, नहीं तो क्या इसमें दिन में तारे वाली क्या बात है, मतलब कि आप कोई ना कोई काम ठीक नहीं करती होंगी ना, इसलिए अगर मामा की आवाज़ आती होगी तो आपको दिन में तारे नज़र आते होंगे, सो और तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ अगर और कोई वजह है तो वो बताएं बुशरा। अच्छा हमारे साथ उस्मान पार्टिसिपेट करें जद्दा से, आपने कहा है कि प्लीज़ विश माई डॉटर आयशा हैप्पी बर्थडे, शी इज़ लिसनिंग योर शो। आयशा हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और आप मुझे बताओ कि आपके बाबा ने आपको क्या गिफ्ट दी है। और मुझे एक बार दिन में तारे नज़र आए थे जब मैं एक बार छत से गिर गया था गुड्डी पकड़ते ना करो यार उस्मान, वाकई छत से गिर गए थे, और फिर बचत कैसे हुई वैसे, ये तो वाकई ऐसी बात है कि वाकई तारे नज़र आ जाए। और ये आप बचपन की बात करोगे, बचपन में ना वाकई उस एज में पता नहीं होता आपको इतना क्रेज़ होता है कि यार पतंग उड़ानी, आप तो खैर उस तरह से पतंग उड़ती नहीं है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन एक टाइम पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस टाइम ऐसा ही माहौल होता था कि लोग जो है वो बस डोर उनको नज़र आ रही होती थी, पतंग नज़र आ रही होती थी एक छत से दूसरी छत पर, तो बस ये पतंग जो है कहीं निकल ना जाए। और खैर जो आपने बात की है ऐसा मैंने वैसे लाइव देखा भी हुआ बहुत सारे लोगों को कि मतलब कि पतंग उड़ाते हुए गिर गए हों, स्लिप हो गए हों, या आगे उन्हें पता ना चला हो कि यार
मतलब कहीं पे जगह नहीं है खड़े होने की. सो ऐसे हादसात जो है वो होते रहते हैं, लेकिन वो फिर आपको सिखाते भी बहुत कुछ है कि यार इंसान बन जाओ. तो खैर, मुझे एक मुझे आपने पतंग उड़ाने की बात की, मुझे याद है कि आई थिंक मैं भी हूँगा कोई, मेरे ख्याल से 6th-7th क्लास में हूँगा, तो मैं भी पतंग उड़ा रहा था. तो अपने दोस्त के साथ ना छत के ऊपर. सो मैंने जब देखा ना कि मेरे वालिद साहब जो है वो नीचे गाड़ी पार कर रहे हैं घर के बाहर जो है, आप यकीन करें कि उन दिनों मुझे बड़ी डांट पड़ती थी इस मतलब पतंग उड़ाने के ऊपर. तो मैंने जो पतंग थी हवा में वो उधर ही हवा में रही, डोर पता नहीं किधर चली गई, मैं फ़ौरन से नीचे. तो मैंने कहा अगर वालिद साहब ने देख लिया ना तो फिर काम बड़ा ख़राब हो जाएगा.

अच्छा जी, इसके अलावा राणा निशान हमारे साथ मुल्तान से पार्टिसिपेट करें। आपने कहा हम तो खुद लोगों को तारे दिखाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा निशान, किस तरह के तारे दिखाते हो यार आप लोगों को?

0: इंटरनेशनल में, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप लाइव कॉल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी लाइव कॉल साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. इसके अलावा एसएमएस मैसेज और फेसबुक के मैसेज लाजमी आप साथ साथ करते रहिए. 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर. और मुझे बताओ कभी आपको दिन में तारे नजर आए हैं तो कैसे. सो प्रोग्राम में फर्स्ट कॉलर जो है हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सफदर रहमान फ्रॉम इस्लामाबाद, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. क्या कहना चाहोगे आप?
1: जी हमें ईद दिन में तारे नजर आते हैं.
0: कब? सॉरी
1: जी, हमें दिन में तारे नजर आते हैं.
0: अच्छा नहीं, कैसे, कब आए थे, कैसे आए थे?
1: दृश्य पढ़ते हैं तो हमें तारे नजर आते हैं.
0: अच्छा नहीं, ये कुछ बात बनी नहीं है. देखो वो
1: और दूसरे तारे भी नजर आते हैं और दिन पे हमें बड़ी खुशी होती है. ये जो महंगाई है ना, ये हमें दिन को तारे दिखाती है.
0: अच्छा, महंगाई जो है वो आपको दिन को तारे दिखाती है. ठीक है.
1: खुशी क्यों होती है?
0: नहीं, खुशी क्यों होती है?
1: खुशी इसलिए होती है कि हम चाहते हैं थोड़े से और ज्यादा तारे नजर आए ताकि हमें सबको एहसास हो जाए, सबको इकट्ठा.
0: अच्छा
1: कलेक्टिव.
0: अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि ज्यादा तारे नजर आने चाहिए,
1: सबको तारे नजर आने.
0: ठीक है. चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज. और जी देखो महंगाई तो इस टाइम पूरी दुनिया में ज्यादा है, ठीक है, और सबको ही तारे नजर आ रहे हैं महंगाई की वजह से. तो खैर, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है. अस्सलाम वालेकुम. जी जबरदस्त, कौन कहाँ से?
2: जी मैं
0: शेखुरा
2: से बात कर रहा हूँ.
0: यार सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. हेलो.
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
3: सुनैन भाई, ईदू बात कर रहा
0: हूँ. ईदू कैसे हो? ठीक ठाक हो? जरा तेज तेज बोलो, कहाँ पर घूमते?
3: ठीक ठाक,
0: बताया तो मैं ठीक हूँ यार. देखो यार, हंसी जा रहे.
3: बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है तो
0: ओके ठीक है. नहीं तो पहले क्यों शामिल क्यों नहीं होते रहे प्रोग्राम में?
3: मैं अस्नान भाई एफएम बहुत ही कम सुन पा रहा हूँ सच में.
0: अच्छा
3: जी, अभी लाइट नहीं है ना तभी एफएम सुन रहा.
0: अच्छा लाइट नहीं है तो एफएम सुन रहे हैं, गुड हो गया, सही हो गया. नहीं तो मुझे बताओ कि दिन में कभी तारे नजर आए हैं?
3: रोजाना तारे नजर आते हैं.
0: अच्छा,
3: शादीशुदा है उनको तो रोजाना तारे नजर आते हैं.
0: अच्छा, शादीशुदा लोगों को तारे नजर आते हैं दिन में?
3: जी जी बिल्कुल.
0: ओके, क्या भाभी बहुत डांटती है आपको?
3: मुझे क्या, जो भी शादीशुदा है सबको डांटते होंगे.
0: नहीं लेकिन हम तो आपकी बात कर रहे हैं ना.
3: तो मेरा तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब के नाश्ते में भी डांट खाते होंगे, लंच में भी डांट खाते होंगे, डिनर करते हुए भी डांट खाते होंगे, है ना?
3: जी जी बिल्कुल, कभी कभार तो कहते हैं दिन को ही तारे नजर आते हैं सच में.
0: अच्छा ठीक हो गया, सही हो गया. और क्या कहना चाहोगे ईदू?
3: और असनन भाई, आज बहुत टाइम के बाद सच में आपसे बात हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है.
0: ओके चलो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया.
3: चलो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना.
0: अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम.
4: जी अस्नान भाई, मैं आतिफ अब्बास की बात कर रहा हूँ, बारको इस्लामाबाद.
0: जी आतिफ, बारको इस्लामाबाद, कैसे हो, खैरियत है सब?
4: महीने का दो दफा तारे नजर आए.
0: अच्छा कब?
4: यार थोड़े दिन पहले मेरी सीम बंद हो गई थी.
0: ओए होए होए होए. अच्छा
4: कॉल भी थी तो 4 महीने पहले मैंने मोबाइल लिया था, मेरे साथ मोबाइल खराब हो गया. मोबाइल लेके उसके पास गया तो उसने चेक करके देखा तो कह रहा है सेटिंग से बंद है यार. तो उसने दस्ती मुझे खोल दी, लेकिन दूसरे बारे में सारे दूसरा ये कि उन दिनों हमारे घर में बिल्लियां घुस आई थी.
0: अच्छा
4: तो उन्होंने हमें दीदिक नेहरा तारे दिखा दिए थे यार, इतना पतंग करती थी, इतना तंग करती थी, और उसने थैले में डाल के बाइक लेके मैं बड़े दूर तो फेंक आया था, अमन हुआ था।
0: अच्छा, नहीं तो ऐसा तो नहीं है बिल्लियों से डर लगता है? कुछ लोगों को लगता है ना डर, वो आगे आगे भाग रहे होते हैं, बिल्लियां पीछे पीछे भाग रही होती है।
4: नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हम पकड़े थे, पकड़ते थे, वो नहीं था, लेकिन वो पतंग बहुत करती थी ना, चरपैया के ऊपर चढ़ जाती थी, बैठने नहीं देती टेबल के ऊपर, खाना नहीं खाने देती थी, वो डरती नहीं थी हमसे ना।
0: नहीं तो आपने भी उनको तंग करना था?
4: मेरा तंग हमने बहुत किया, बहुत भगाया, लेकिन वो पता है हम दरवाजा बंद करते थे ना, कुंडी नहीं लगाते थे, तो वो एक लाइन बना के एक दूसरे को धक्का देती थी, दूसरी दूसरे को धक्का देती थी, पीछे दरवाजा खोल देती थी।
0: अच्छा,
4: तो सुन भाई इस तरफ, तो आज पढ़ाई की बड़ी बात हो रही है, रिजल्ट की बड़ी बात हो रही है, तो अगर कहें तो एक लतीफा सुना दो उससे रिलेटेड,
0: जल्दी से छोटा सा।
4: वो एक था ना, बाबा बेटे से कहते हैं कि इस बार अगर तू फेल हो गया ना, तो फिर मुझे बाबा ना कही, मुझे अब्बा ना कहना। तो रिजल्ट आया तो बाबा इंतजार कर रहे थे, तो घर पहुंचा बेटा रिजल्ट लेके, तो उसने बाबा ने पूछा हाँ सुनाओ बेटा क्या हुआ, तो उसने कहा यार बशीरे फेल हो गया। सर भाई एक बात और गेम सुना आप रेडियो छोड़ रहे हैं, ये बात सच है?
0: आई डोंट नो
4: यार, अगर ऐसा कुछ है तो नजरसानी करें यार।
0: चले इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, ठीक है?
4: नहीं बात आज ही
0: कर लिया है प्रोग्राम में। आज ही कर लिया, अच्छा बाद में बात करते, ठीक है?
4: चलो सब सुनने वालों
0: को सलाम, चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और भाई जी आप ही कॉल 051-111-111 एंड 051-920-2540, सो कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम
2: जी, कैसे हैं भाई आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से?
2: मैं उस्मान बात कर रहा हूँ, लाहौर।
0: उस्मान फ्रॉम लाहौर जी, उस्मान क्या कहना चाहोगे?
2: आपके टॉपिक पे बात करना चाहेंगे।
0: हाँ हाँ,
2: हमें तो दिन में तारे तब नजर आए रहे जब हमसे बेवफाई हुई थी।
0: अच्छा, बेवफाई हो गई थी फिर तारे नजर आ गए थे, ओहो फिर तो नींदे भी उड़ गई। अच्छा,
2: यंग अभी ना, तकरीबन मैं बचपन से ब्लाइंड था, लेकिन अभी ना अभी थोड़ा सा ना आंखें वापस आई हैं।
0: ओके ओके, चलो ये तो अच्छी बात है।
2: एक साल पहले रिसेंटली ये वाक्य हुआ।
0: ओके चलो ये तो अच्छी बात है यार, अगर आपको नजर आ रहा है अब तो ये तो
2: 30-40% वापसी ना हुई है।
0: चलो इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएगी, थोड़ा रिकवर किया तो बाकी भी इंशाल्लाह हो जाएगा।
2: बस आपने दुआ करनी है और आपने मेरे से पोएट्री कहनी है छोटी सी, कोई कह रहे ना अगर आप,
0: क्या करूँ
2: एक शेर कह रहे ना अगर कोई हो सके तो।
0: यार पोएट्री का मुझे शौक ही नहीं है।
2: चलें कोई ट्रैक प्ले कर दीजिएगा मेरे लिए।
0: चलो जो नेक्स्ट ट्रैक वो आपके लिए, ठीक है?
2: नाम ले लीजिए बहन भाई, ठीक है? थैंक यू,
0: ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम,
5: हेलो, वालेकुम सलाम, रजा भाई क्या हाल है
0: जी? ठीक ठाक, कौन कहाँ से?
5: मैं रजा भाई फजल महमूद बात कर रहा हूँ, कराची से हिजरत पाली हुई
0: है जी। फजल भाई क्या कहेंगे आप?
5: बस आपको शो यार एंजॉय कर रहा था, अभी मैंने चूज किया बस इस पे, पहले ये तो भाई का भी शो चलता था, मैंने स्कोर बड़ी कोशिश की पर लगी नहीं गई।
0: अच्छा,
5: चलो रजा भाई से भी थोड़ी गपशप कर ले, सारे कॉलर आ रहे हैं, मैंने बोला हम भी थी हाले दिल सुना दे अपना।
0: अच्छा नहीं, हाले दिल का तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैंने जो सवाल किया उसके वाले से कुछ कहना चाहें तो आप कह दीजिए।
5: अच्छा एक बार मुझे पूछे सवाल, मैं आपको बताऊंगा।
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, सवाल इतनी बार तो मैंने बोल दिया, और मैं कितनी बार पूछूं सवाल। एनीवेज जी, मैं वो कुछ कॉलर होते हैं स्पेसिफिकली, मैं जरा उनको जरा ध्यान से सुनता हूँ। अच्छा खैर जी, 051-111-111 and 051-920-2540 पर आपकी कॉल्स हैं और साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो 101 एक्सप्रेस मैसेज, दाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, और साथ साथ मैसेज देखते हैं कौन कौन से लिसनर्स जो हैं वो प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अच्छा पार्टिसिपेट किया है किसने? अच्छा रोजी शेख हमारे साथ पार्टिसिपेट करी है। आपने कहा कि एक बार दिन में तारे नजर आए थे जब मैं एग फ्राई कर रही थी और ऑयल बहुत गर्म था और थोड़ा सा मेरे हाथ पे गिर गया और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। हाँ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے میسج میرے پاس آ رہے ہیں, اس میں ہیلو ہائے اسلام دعا بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں جو میں نے سوال کیا اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے, تو اس لیے ان سارے میسج کو میں اسکپ کر رہا ہوں. اور دوبارہ بتا رہا ہوں, سانگ سے ریکویسٹ جو ہے وہ میرے پروگرام میں پوری نہیں ہوتی ہیں, تو فائدہ نہیں ہے کوئی سانگ سے ریکویسٹ کرنے کا. اچھا عائشہ عثمان ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریے, آپ نے کہا کہ تھینک یو سر آفٹر یور انسسٹ مائی فادر گیو می 500 ریال ایز اے برتھ ڈے گفٹ. واؤ, یہ تو پھر بہت اچھا ہو گیا نا, اور خوش رہو آپ, اور آپ کی برتھ ڈے ہے, خوب انجوائے کرو اور ہنستی مسکراتی رہو, اور میرے سے کیک جو ہے نا وہ بھی آپ خود ہی کھا لیں.

ऑलराइट जी, मैंने आपसे पूछा है, मुझे बताओ कि कभी आपको दिन में तारे नजर आए हैं? अगर आए हैं तो कैसे नजर आए हैं? सो वो आप मुझे बता रहे हो 0511111 and 0519202540 पर, और साथ आपके मैसेज जो हैं वो तो मेरे पास आ ही रहे हैं. और ये है कि आपकी मजीद कॉल्स और आप मैसेज जो है कुछ ही देर में हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं. मुझे एक ट्रैक की तरफ बढ़ना है, और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, आरिफ लोहार साहब की आवाज पे. सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM 101 International.

अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात सोच रहा था, अभी शो से पहले, अभी मैं कुछ पोस्ट जो है मैं सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, और पिछले दिनों इसके ऊपर डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। अभी पिछले दिन फीफा वर्ल्ड कप जो है ख़त्म हुआ है, तो रोनाल्डो CR7 जो है मेरे ख्याल से दुनिया में अगर बहुत ज़्यादा कोई मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से एक है। फिर उनका लास्ट मैच था फीफा वर्ल्ड कप का। फिर इसी तरह लियो मेसी हैं, हो सकता है उनका भी वर्ल्ड कप का लास्ट मैच हो। अभी तक उन्होंने कोई अनाउंसमेंट प्रॉपर नहीं की है साथ CR7 ने, लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल से लास्ट वर्ल्ड कप दोनों का होगा। तो मैं एक बात सोच रहा था वैसी कि यार दोनों ने, मेसी और रोनाल्डो ने कितने फैंस बनाए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। मतलब कि दो ग्रुप्स में लोग जो हैं वो डिवाइड हुए हैं, आधे मेसी की तरफ आधे रोनाल्डो की तरफ, और क्रेजी फैंस, और कितना जो है एंटरटेन किया इन दोनों ने अपने सारे फैंस को। सो मैं जो बात यही सोच रहा था कि देखो, एक किसी भी फील्ड में आप होते हो तो उसमें आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हो, परफॉर्म करते हो, फिर अपना नाम बनाते हो, फेम मिलता है, पैसा मिलता है, लोग आपको जानते हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें फिर आपको स्टेज जो है वो छोड़ना पड़ता है, और वो टाइम कौन सा होता है कि जब आपने सारा कुछ जो है वो देख लिया हो, ठीक है। और ये दुनिया का एक प्रोसेस है, एक दुनिया का एक निज़ाम है, और वहाँ पर आपको रिटायरमेंट जो है वो लेनी पड़ती है। सो उस टाइम ऑब्वियसली इंसान की फीलिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं वही समझ सकता है जो रिटायरमेंट जो है वो ले रहा होता है, जिसने अपना पूरा पीक टाइम देख लिया होता है और फेम पैसा सब कुछ देख लिया होता है। ऑब्वियसली जिसने इतना पीक टाइम देखा हो तो उसके लिए चीज़ें छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन लाइफ ऐसी चलती है और आपको खैरबाद जो है वो कहना पड़ता है। इसी तरह फिर कोई ना कोई रेडी होता है आपकी जगह लेने के लिए, ठीक है। और यंगस्टर्स जो हैं वो एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें शोहरत मिलती है, उन्हें वो सब कुछ जो है वो अच्छा लग रहा होता है, वो हवाओं में होते हैं, ठीक है। जब आपको सब कुछ मिल रहा हो तो ऑब्वियसली इंसान एक अलग ही लेवल पे होता है और अलग ही सोच उसकी होती है, और वो उस सारे माहौल को, उस सारे आप कह लो फेम को इंजॉय कर रहा होता है। और ऑब्वियसली उस टाइम उसकी बातें भी बड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। वो एक बात जो है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि

जब आप मशहूर हो जाते हो तो आप कोई गलत बात भी करो तो वो मशहूर हो जाती है, ठीक है, लोगों को अच्छी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपको कोई नहीं जानता होता आपकी बात सुनने वाला जो है वो इतने लोग नहीं होते हैं, तो वो इसी तरह एक और बात कहते हैं, जब आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर आपकी कोई ऐमी फालतू बात भी जो है ना लोग उसके ऊपर वाह वाह कर रहे होते हैं। तो हर एक का टाइम होता है, हर कोई अपने टाइम को एंजॉय करता है, लेकिन कभी ना कभी जो है वो आपका टाइम जो है वो ख़त्म होना होता है, और उस टाइम फिर आपने फिर उधर से एक आप कह लो कि नई सीढ़ी जो है वो चढ़नी होती है। और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद जो है वो आराम से बैठ जाते हैं, बस यार यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो एक्टिव लाइफ गुजारते हैं और अच्छी लगती है, वो फिर उधर से अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे काम जो है और करने स्टार्ट हो जाते हैं। सो क्या जी, लाइफ चलती रहती है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और हर एक की रिप्लेसमेंट जो है इस दुनिया में है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की, अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया की हम बात भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम बचपन से देखते आए हुए हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पे उनको देखते हैं तो ऑब्वियसली एजिंग साथ साथ चल रही है, एज ज़्यादा हो रही है, ज़िंदगी आगे चल रही है, तो जितना मर्जी आप अपना मेंटेन करने की कोशिश कर लो, लेकिन एज फैक्टर जो है ना वो बीच में आ ही जाता है।

0: ऑलराइट जी, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है सलमान राशिद ने, और आपने कहा कि पीक सिंगर डिस्ट्रॉयड हिज करियर बाय हैंगिंग हिज चाइल्ड इन द विंडो, नो वन अप्रिशिएटेड हिम। किसकी आप बात कर रही हैं सलमान राशिद? मुझे समझ नहीं आया कि आपने किसके बारे में बात की है। अच्छा जी, कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: अफनान भाई क्या हाल है
0: जी? मैं बिल्कुल ठीक हूं। कौन कहां से?
1: अब्दुल हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: जी हाशमी साहब, क्या कहना चाहेंगे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अच्छा ये टॉपिक पे आता हूं। मैं ये मुहावरा है जिनको तारे दिखाना या नजर आना, किसी को जहनी तौर पर दिमागी सदमा पहुंचाना जिससे उसकी आंखों के सामने तारे नजर आ जाए, मतलब वो अपने होश में ना रहे, मुहावरा है। तो मैंने मैसेज किया था, बहरहाल आसमान पे तो नजर नहीं आए, मतलब साफ होता है। तो एक दफा हमने बड़ी शरारतें की, तो वालद साहब हमारे से बड़े स्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: उन्होंने, मैं घर आया, उन्होंने डंडा पकड़ लिया और वो बस नहीं, आगा ना पीछा नहीं देखा।
0: ओके।
1: पिटाई की और वो दिन को अपने तारे नजर आ गए।
0: हाँ,
1: बस ये बचपन का अपना एक मजा होता है, बेफिक्री के दिन होते हैं, बस कभी कभी कुट भी पड़ जाती थी। और ये वालदैन की जो जो ये मार होती है ना, ये बच्चे के लिए ना एक जिस तरह वो सब्जा नहीं आ जाता फसल पे, बाहर आ जाती है, तो उसके लिए ना वो एक बड़ी अच्छी चीज होती है। वो एक मुहावरा है ना,
0: आपने भी बात की ना, कुट असल वर्ड है, कुट जो जो वालिद से कुट पड़ती है ना,
1: और कुट में भी बड़ा मजा होता
0: था। ऐसे ही
1: इधर मारो बड़ा मजा आता था। और दुआ में याद रखें,
0: दुआ
1: में दोस्तों को सलाम। चले,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जी आप?
0: जी जी अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से?
2: जी मोहम्मद शहजाद शाहबाग लाहौर से बात कर रहा हूँ।
0: जी शहजाद भाई, क्या कहना चाहेंगे?
2: बस जी यही, जो आपने मौजू रखा है ना, बहुत अच्छा है। जिस दिन में तारे नजर मेरे दो दफा आए।
0: अच्छा।
2: एक दफा तो मैं नानके जब गया था ना, तो उनका बकरा खोल के मैं 5 रुपए में बेच आया था।
0: बकरा 5 रुपए में बेच आए थे?
2: 5 रुपए में।
0: ये कब की बात कर रहे हैं?
2: ब्लैक नोट होता था ना पहले, 5 वाला सुरख रंग का भी होता था। तो वो 5 रुपए में जब बेचता तो फिर जो तारे नजर चलाए उन्होंने, क्या बात है जी।
0: अच्छा।
2: तो दिन में तारे नजर आए। एक दफा ना मैंने दादे से भी मार खा दी, वो बड़े तारे नजर आए मेरे। तो कब तो जो तार पे रस्सी पे ना जो कपड़े सूखने नहीं पाए होते गिले, तो उस पे गाड़ी फेंक के ना, तो मैं उसको हला रहा था, ऐसे ऐसे कपड़े गीले नीचे जा पड़े। तो फिर मुझे दादे ने पकड़ा और चिमटे के साथ जो मारा मुझे, तो सारे नजर आ गए जी।
0: ओके।
2: तो चिमटे के साथ मार खा दिया। जब भी गाना कहीं पे लगा होता ना चिमटा ताम वजता, तो मैंने अपना दादा याद आता जी।
0: ओके ओके।
2: अभी भी तारे वो नजर आते जब गाना सुनता हूँ जी।
0: ठीक हो गया
2: माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका शो होता है, बड़ा दिल खुश होता है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, सबको मेरा सलाम।
0: चले, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
2: ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
0: Alright, जी 0511111 and 0519202540 पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और मुझे बता रहे हो कि कभी आपको दिन में तारे नजर आए हैं, अगर आए हैं तो कैसे नजर आए हैं। साथ आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं 101 एक्सप्रेस मैसेज, नाम शाह के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। एक ट्रैक की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है उजैर जसवाल की आवाज में, सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हुसैन रजा, आपको मेरा साथ ठीक रात के 2 बजे तक।

0: अच्छा जी, अदनान हमारे साथ राउलपिंडी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा है कि अभी कुछ महीने पहले जो है वो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे दिन में तारे नजर आ गए। ये मोबाइल फोन जो है ना, उसकी वजह से इस तरह के काफी मसले हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। और जो डेली में देख भी रहा होता हूँ कि मतलब अगर कोई गलत ड्राइव कर रहा होगा तो वो लाजमी मोबाइल फोन जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली फिर जब इस तरह वो कहते हैं ना, इस तरह तो होता है फिर इस तरह एक काम में, जब आप बात सुनते नहीं हो और मतलब के मना नहीं होते हो, तो फिर कभी ना कभी नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाता है, और कभी कभी नुकसान ज़्यादा भी होता है। और मुझे आपकी बात से याद आ गया, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैंने एक बार बड़ा नुकसान उठाया था। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और खैर मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि मैं अपने एक दोस्त के घर से आ रहा था पढ़ के, मेरे साथ एक और दोस्त भी बैठे हुए थे, मेरी गाड़ी थी, मेरी क्या वाले साहब की गाड़ी थी। और जहाँ जिस रोड से मैं गुजर रहा था वहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो एक गाड़ी जो है रोड के बीच में खड़ी हुई थी, और जब स्ट्रीट लाइट नहीं थी तो वो किसी को नज़र भी नहीं आ रही थी, और वो थी भी 1960 के मॉडल की। तो यकीन करें एकदम से सिर्फ आवाज़ आई है डिज। तो जब मैंने बाहर निकल के देखा तो मेरी गाड़ी सारी आगे से बोनट जो है ना अंदर हो गया, और दूसरी गाड़ी जो थी 1960 मॉडल की उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर नुकसान काफ़ी हो गया मेरा, और यकीन करें कि पता ही नहीं चला कोई वो दोस्त आपस में गाड़ी में बैठ के ना वो रोड के बीच में गप्पे शप्पे मार रहे थे। तो समटाइम्स ऐसे आपको आपके साथ नुकसान जो है वो हो जाता है। एनीवेज जी, कॉल आपकी हम कुछ शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बज गया है और एक बजे के बाद जो है वो कॉल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ था, और खासतौर पे मेरे हेडफोन में इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम है, इतनी डिस्टॉर्शन आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ट्रांसमिशन ठीक नहीं आ रही, लेकिन मेरे हेडसेट पे प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम,
1: क्या हाल है जनाब?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक था, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, पिशावर से।
0: मोहम्मद अली फ्रॉम पिशावर। जी अली, क्या कहना चाहोगे?
1: अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं?
0: जी मैंने पूछा क्या कहना चाहोगे?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो टॉपिक रखा है, मैंने अभी अभी रेडियो ऑन किया, तो एक दो कॉलर ने बात किया, तो मैं एकदम ही टॉपिक पे समझ गया हूँ कि वो टॉपिक क्या है, कि दिन में तारे। तो ये हकीकत बात है, हमारी जिंदगी में मुझे दो दफा ऐसे तारे नजर आए हैं कि मैं क्या कहूँ।
0: अच्छा।
1: एक दफा अम्मी अब्बू ने मारा था इकट्ठे मिल के।
0: अच्छा, तो
1: ऐसे तारे नजर आए थे कि आप यकीन करें, जैसे कार्टून में वो टॉम एंड जेरी के उसमें नहीं होते थे, सर के गिर्द ऐसे तारे घूमते थे या चिड़िया घूमती थी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था मुझे।
0: अच्छा, नहीं तो ऐसी क्या बात होगी कि अम्मी और अब्बू ने दोनों ने मिल के मारा?
1: सर बस ऐसी बात हो गई थी कि मैं थोड़ा सा लेट आ गया था घर।
0: अच्छा।
1: हमारा टाइम होता था 8 बजे घर पहुँचना।
0: ओके।
1: 8 बजे से पहले हम घर होते थे, तो उम्र भी इतनी नहीं थी, छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, उस वक्त पार्टी में थे, तो मेरी सर को भी 5 ईयर हो गए। तो दूसरी जो तारे मुझे नजर आए हैं, तो हमारे एक टीचर होते थे इस्लामियात के, तो वो सवाल देते थे, छोटी सी इस्लामियात की किताब होती थी, तो फिर उसमें से एक सवाल हमें दे देते, तो वो सवाल फिर बाद में पूछते थे हमसे।
0: अच्छा।
1: तो एक दिन मुझे वो सवाल मैंने याद नहीं किया, तो वो कावे के बड़े शौकीन होते थे, हमारे पेशावर में कावा बहुत मशहूर है।
0: अच्छा।
1: जिसे ग्रीन टी कहते हैं। तो एक वो होता था, एक उसके साथ उनका एक और दोस्त होता था, वो भी टीचर था, अरबी का टीचर था, दोनों की दाढ़ियां थी, वो सफेद दाढ़ी वाला था इस्लामियात का, जो अरबी का था उसकी भी दाढ़ी थी, लेकिन उसकी ब्लैक थी, छोटी छोटी थी, दोनों अच्छे थे। तो उन्होंने एक दिन हमने कहे दोस्तों ने कहे, जब पकड़ लिया जिसको नहीं आते थे सबको निकाले, कहते खड़े हो, तो आपस में चला, हमने क्या पैसे डालते हैं, वो कहा कह देंगे, बस ये कहा पी देंगे, हमें छोड़ देंगे।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर होता भी था ऐसे, काफी दोस्त ऐसे थे हमारे, वो ऐसे करते भी थे, हम तो याद कर लेते सवाल, क्योंकि छोटे छोटे सवाल होते थे, छोटी सूटी होती थी, हमें तो याद हो जाती थी, बस उस दिन शैतानी काम था, मैंने याद नहीं हुई थी मुझसे। तो उस दिन जी कहते नहीं, आज तो कहते गाँव मावा नहीं चलेगा, अच्छा यार आज अल्लाह खैर करे कमाने चलेगा तो फिर क्या चलेगा,
0: साड़ी वारी आए तो कमाई नहीं।
1: उस दिन उस्ताद ने हमें, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि उस दिन टीचर ने, उस टीचर ने ऐसा मारा है कि मैंने कभी भी उस टीचर ने ऐसे नहीं मारा था। खिड़की के बीच में एक लड़के ने हाथ पकड़ा है, दूसरी खिड़की में दूसरे ने हाथ पकड़ा है और उल्टा खड़े हो गए सीधे बिल्कुल, और जो लगी है ना पहली मुझे पीछे, आप मैं क्या कहूँ कि कसम से मुझे ऐसे लगे मेरे सर पे तारे घूम रहे हैं।
0: ओके,
1: तो फिर ओके। एक नहीं पांच लगी है, तो फिर उसके बाद छोड़ छोड़ा उसने, तो वाकई मुझे ऐसे लगे कि मेरे गिरफ्तार सर के इर्द गिर्द तारे घूम रहे हैं हकीकत में।
0: ठीक हो गया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, काम करने वाले को सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी अली थे हमारे साथ और अली अपनी मुझे बात बता रहे थे। अच्छा, तारे दिन में देखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मार पड़ी हो, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अच्छा, सलमान राशिद हमारे साथ पार्टिसिपेट करी हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था पीक सिंगर डिस्ट्रॉयड हिज कैरियर बाय हैंगिंग हिज चाइल्ड इन द विंडो, नो वन अप्रिशिएटेड हिम, और आपने जो है माइकल जैक्सन का रेफरेंस जो है उस उनकी बात की थी कि उसने एक्साइटेड होकर फैंस को अपने बच्चे को विंडो से दिखाया था, और आपने उस बारे में बात की थी। और माइकल जैक्सन के भी पिछले दिनों बायोपिक भी रिलीज़ हुई थी और दुनिया ने देखी और अपना फीडबैक दिया, मैं अभी तक देख नहीं सका, लेकिन जो है कि काफ़ी रिकॉर्ड्स जो हैं उसने बनाए।

ओके जी 051111110519202540 पर आप लाइव कॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हो. इसके अलावा 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शाय के नाम लेकर 4471 पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और www.facebook.com/fm101channel पाकिस्तान पर आपके मैसेज जो है वो मेरे पास आ रहे हैं.

0: अच्छा आजकल की जनरेशन को सबसे ज्यादा तारे जो है वो पता है कब नजर आते हैं, एकदम से आपके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो जाए ना, या आपके मोबाइल फोन के सिग्नल्स ना आ रहे हो, ठीक है, या आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, तो उनको उस टाइम तारे नजर आ रहे होते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल फोन के बगैर जो है आप बिल्कुल ऐसे समझते हो जैसे लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है
1: जी।
0: आप बोले
1: जी, अभी आ रही आवाज?
0: जी जी आपकी आवाज आ रही है, कौन कहां से बात कर रहे हैं
1: जी? फरहान बात कर रहा हूं।
0: फरहान कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं रावलपिंडी से।
0: अच्छा जी फरहान, क्या कहना चाहेंगे?
1: बस वैसे ही कॉल किया, आज फोन किया तो आपकी आवाज आई।
0: ओके, कुछ कहना नहीं चाहेंगे
1: जी? सुनने वाले सबको सलाम।
0: चले ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: अच्छा सा गाना प्ले कर।
0: अच्छा ऑलराइट जी, वैसे कॉल की थी और वैसे बस दिल की कॉल कर दी। चले ठीक हो गया। चले जी 0511111 0519202540। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जनाब कौन कहां से?
2: जी जी
0: कौन कहां से बात कर रहे हैं?
2: मैं सलमान मिर्ज़ा फ्रॉम पिंड राधन खान से।
0: ओके सलमान मिर्जा जी, सलमान क्या कहना चाहेंगे आप?
2: टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगा कि शुरू से स्टार्ट करूं। हेलो
0: जी जी,
2: सुबह उठता हूं।
0: नहीं नहीं
2: बेगम,
0: जस्ट एक लाइन में बता दें।
2: वही बता रहा हूं आपको, अरे के बारे में बता रहा हूं।
0: अच्छा,
2: सुबह उठता हूं, बेगम की बातें सुनता हूं तो तारे ही तारे नजर आते हैं।
0: अच्छा,
2: फिर नाश्ता करता हूँ, टीवी ऑन करता हूँ, खबरें सुनता हूँ तो खबरों में जो चेहरे देखता हूँ, बातें सुनता हूँ तो तारे ही तारे नजर आते हैं।
0: अच्छा,
2: फिर ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, फिर लोकल से जब जाता हूँ तो तारे ही तारे नजर आते हैं।
0: अच्छा,
2: फिर ऑफिस पहुँचता हूँ तो फिर कभी मेरे सर पे तारे होते हैं, जो मेरे ऑफिस कुलीग होते हैं उनके सर पे तारे ही तारे।
0: ठीक है,
2: फिर लास्ट में अब कमरे में बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर अब भी मुझे तारे ही तारे नजर आ रहे हैं।
0: अच्छा नहीं, वो इस टाइम तो चले रात का टाइम है ना, इस टाइम तो तारे ही नजर आएंगे, लेकिन दिन में आप कमरे में बैठा हूँ
2: तो आपसे बात कर रहा हूँ तो तब भी तारे ही तारे नजर आ रहे हैं।
0: ठीक हो गया, सही है,
2: ठीक हो गया जनाब।
0: जनाब बिल्कुल ठीक हो गया।
2: ओके
0: ऑलराइट जी, वैसे टीवी देखते हैं तो वाकई ये वैसे आपने बात सीखी, टीवी देखते हैं तो मुझे भी तारे नजर आते हैं यार, तारे और टेंशन भी दिखाई देती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
3: जी मलिक इरफान बात कर रहा हूं।
0: जी इरफान भाई कहां से कॉल कर रहे हैं?
3: जी मंडी बालदेन से।
0: जी क्या कहना चाहोगे आप?
3: टॉपिक पे सारे बात करना चाहूंगा कि मुझे ना दो दफा दिन में तारे नजर आए थे।
0: अच्छा,
3: एक दफा तो ऐसा हुआ था कि रेल आने वाला था तो एक दोस्त को मैंने कहा कि मतलब यार मुझे ना फलां तरीक को ना इतने पैसे चाहिए। तो उसने कहा कि इंशाल्लाह यार घबराते क्यों, आप मेरे भाई हो, आपको जब चाहेंगे मतलब मिल जाएंगे। तो जब वो दिन आया तो मैंने उसको कहा कि वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा था।
0: ओह अच्छा,
3: वो तारे नजर आने लगे थोड़े बहुत। जब उसने कहा कि यार मेरे पास तो थे लेकिन थोड़ी देर पहले एक बंदा आया तो मैंने उसको दे दी।
0: अच्छा,
3: तो एक दिन वो था जब मेरे मतलब दिन में तारे नजर आए थे, तो एक दिन वो था कि जब मेरा ना पाँव टूटा था, मतलब मुझे क्रैश आई थी तो मेरा पाँव टूट गया था। तो मतलब हमारे ग्राम में कोई ना बड़ी दुकान तो नहीं, तो एक बंदा था वो मतलब ना वो क्या कहते हैं हाथ के जरिए मतलब ठीक करता था। तो उसके पास गया तो पता चला वो भी बीमार है, वो अस्पताल में है।
0: अच्छा,
3: तो वो भाई तो घर पे नहीं था, भाई आता तो उसने मुझे कहीं ले जाना था। वो जो एक दिन था ना मतलब दर्द की वजह से, यकीन करें कि मैं इतना वो दिन मेरे लिए मुश्किल था ना, ये दो दिन मुझे कभी नहीं बोल पाते, क्योंकि एक दिन अचानक जब जवाब मिला था तो फिर कोई बात नहीं चलता था कि अब क्या करूँ।
0: ठीक हो गया,
3: तो माशाल्लाह नाइस से अल्लाह ताला इसी तरह आपको ऐसा मुस्कुराता रखे।
0: चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी जिस तरह आज 28 तारीख है, अभी फर्स्ट आ रही है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे। जब बिजली के बिल आएंगे, अभी इरफान ने सही बात की, बिल के हवाले से बिजली के बिल आएंगे तो बहुत सारे लोगों को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। खैर जी, जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं जारी बात है, फिर उसका बिल तो पे करना पड़ता है। कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहां से? आयशा फ्रॉम रावलपिंडी। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चले ठीक, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। 051-111-101 and 051-920-2540 पर आपकी कॉल्स आ रही हैं और एक भाई साहब को फिर से शुरू हो गया कि मैंने कॉल करनी है, तो आप वो लाइन को डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हम एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं फिर हम वापस आते हैं। एनीवेज जी, नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है समद कदीर की आवाज़ में, ट्रैक शायर। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा एंड कीप लिसनिंग टू एफएम 101 इंटरनेशनल।

0: और जी लिसनर्स, आप हो वेलकम बैक एट एफएम 101 इंटरनेशनल में और ट्रैक सुन रहे थे आप संबत कदीर की आवाज़ में। और आपसे मैंने पूछा जी कि मैं बताएं कि आपको दिन में तारे जो हैं वो कब नज़र आए हैं और कैसे नज़र आए हैं। और आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर करें, नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। और लाइव कॉल्स आपकी हम प्रोग्राम में शामिल करें 051-111-111-0519-202-540 पर। और हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है नादिया ने रावलपिंडी से, आपने कहा है कि महंगाई देख के दिन में तारे जो है वो नज़र आ जाते हैं। अब महंगाई की बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन बस ऐसा ही है। और लेकिन महंगाई अगर है तो आप देखो लोग जो है वो अपनी कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम भी तो ज़्यादा करते जा रहे हैं ना। और क्योंकि अब लोग आजकल की जनरेशन को पता है कि अगर वो मतलब डिफरेंट जगहों से नहीं अर्निंग करेंगे तो गुजारा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए फिर दो काम तीन काम जो है वो एक साथ कर रहे होते हैं, फिर जाकर आपको कहीं ना कहीं जो है वो सर्कल बनता है, आपके एक्सपेंसेस जो है वो पूरे होते हैं। तो सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, आपको एफर्ट तो करनी पड़ती हैं। और एनीवेज जी कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? मैं हाफिज मोहम्मद तौसीफ बात कर रहा हूँ कनाडा से।
0: तौसीफ फ्रॉम कनाडा
1: जी।
0: जी तौसीफ भाई,
1: मैं ट्राई कर रहा था अच्छा दूसरे नंबर पे लेकिन नहीं मिल रही थी, अब मैंने कहा ये वाला नंबर ट्राई करो, फर्स्ट टाइम ही मिल गई।
0: ओके ओके, इसलिए मैं ये नंबर साथ साथ बोलता हूँ कि अगर उधर कॉल ना मिले तो इधर मिल जाए।
1: तो दिन में तारों की बात है तो मुझे जो सबसे ज्यादा, वैसे तो काफी दफा ऐसा हुआ है कि दिन में तारे नजर आ गए, लेकिन एक दफा मैं थाईलैंड ट्रेवल कर रहा था एयरवेज पे
0: अच्छा,
1: और ब्रॉड डेलाइट थी और अचानक से जो है वो मौसम खराब हुआ, और ऐसा खराब हुआ कि दिन में तारे क्या वो है ना तारों से आगे जहाँ और भी वो जहाँ भी नजर आना शुरू हो गए थे।
0: अच्छा ये वैसे आपने सही बात की कि और भी बहुत सारे जहाज नजर आने शुरू। अच्छा जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं ऑब्वियसली फ्लाइट्स में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं इस तरह के,
1: बाकी भी होते रहे हैं, मुझे काफी हुए हैं, लेकिन वो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि वो वाकई जो ऐसे लग रहा था कि बस वो अगला जहान आने वाला है, तारे तो आ गए हैं अगला जहान भी आएगा।
0: अच्छा अच्छा तौसीफ भाई, बहुत सारे लोग जो है ना वो डर जाते हैं कि यार अगर कभी फ्लाइट्स में इस तरह हो जाए ना तो उनके दिल में डर बैठ जाता है।
1: नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अगर कोई ट्रेवल कर रहा हो तो वाकई डर जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग आप करते रहते हैं तो फिर वो एक आदत सी हो जाती है। अब मैं 1 ईयर या 2 ईयर्स पहले यूके का ट्रेवल जब कर रहा था उस टाइम भी इसी तरह हुआ था, लेकिन वो इतना स्क्वेयर नहीं था।
0: हाँ।
1: वो टर्की से मैं यूके जो है ना फ्लाइट थी, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी टर्की से।
0: ओके।
1: तो उस टाइम भी रास्ते में हुआ था लेकिन वो इतना स्क्वेयर नहीं था, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं भूलता वो थाईलैंड वाला। वो जो है ना थाईलैंड से थोड़ी देर पहले की पहले 15-20 मिनट्स पहले जो हालात हुए थे वो समझ से बाहर थे।
0: ओके ओके, तो मुझे बताएं आप कनाडा में कहाँ पर रहते हैं, किस साइड पे किस जगह पे?
1: मैं टोरंटो में रहता हूँ।
0: अच्छा आप टोरंटो में होते हैं, ठीक
1: है। टोरंटो के साथ ही बेसिकली इटोबिको का छोटा सा टाउन है, बेसिकली टोरंटो के अंदर ही आता है, तो इटोबिको में रहता हूँ।
0: ओके ओके ठीक है, सही हो गया। तो सी भाई और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहेंगे, मैं तो अक्सर सुनता रहता हूँ लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, बेसिकली मैं 111-111-0 वाला नंबर ट्राई करता हूँ, वो कभी नहीं मिला आज तक नहीं मिला मुझे तो साल हो गया सुनते हुए, यहाँ पे तो ऑनलाइन ही सुनता हूँ क्योंकि रेडियो तो उस तरह होता नहीं है, तो मोबाइल पे ऐप की हुई है तो उससे सुनता रहता हूँ।
0: ओके,
1: तो मैं ट्राई बहुत करता हूँ लेकिन आज तक मिला नहीं, मैंने कहा चलो ये दूसरा नंबर आपने बताया, वो आप इतनी स्पीड से बोलते थे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया दूसरा नंबर ना।
0: अच्छा
1: अभी आपने दोबारा बोला, मैंने कहा चलो ये इस नंबर पे ट्राई करता हूँ।
0: चलो अच्छा किया,
1: वो नंबर ट्राई किया तो वो फोन मिल गया।
0: चलो थैंक यू वेरी मच,
1: सुनने वालों को सलाम,
0: अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह।
0: और राइट जी, तौसीफ थे हमारे साथ कैनेडा से। और फ्लाइट्स में अक्सर इस तरह जो है वो हो जाता है, और बात आपने सही की, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो है होते हैं उनको इतना पता नहीं चलता क्योंकि वो इतना यूज्ड टू हो जाते हैं इन सारे एक्सपीरियंसेस के कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।

0: अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले महंगाई की, और मुझे एक और मैसेज आ गया कि अच्छा हमारे साथ रिजवान है, आपने कहा है कि जब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ और मेरे बजट से बाहर जो है कोई चीज मुझे मिले तो फिर मुझे तारे जो है वो नजर आ जाते हैं। ये तो रिजवान आजकल मामूली सी बात है यार, ये तो हर जगह ही देखने को मिलता है।
1: तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया।
0: मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके माइंड में कि यार मैंने एक जीन्स बाहर से अच्छी जीन्स जो है वो लेनी है किसी अच्छी शॉप से, पर आपने बजट बनाया होगा यार मैं मतलब 5-6 हज़ार 7 हज़ार की जीन्स जो है मैं लूँगा, अब तो मतलब प्राइसेस इतनी जल्दी ऊपर नीचे होती हैं कि आपको समझ ही नहीं आती एकदम से। 10 हज़ार जब आप सुनते हो तो ऑब्वियसली आप कहते हो यार ये तो मैं तो कुछ और सोच के घर से निकला था। तो अभी हर जगह ही ऐसे ही है, मतलब कि आप खाने पीने की आप जगह पर चले जाओ वहाँ पर भी ऐसा है। सो शॉपिंग हर जगह ऐसे ही चल रहा है, जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर नीचे होती है ना इसी तरह जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ पर प्राइसेस की समझ नहीं आ रही आजकल।

अच्छा जी प्रोग्राम में ट्रैक प्ले करते हैं. नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है अली जफर की आवाज में, और ट्रैक है रुखसाना. एंजॉय कीजिएगा, हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद.